हाँ मैं नमता पने कोंगरा में यही हम दे इन तय यो ते ही मैं तो न बाम वाते राई ने किए ना कांता ने आरो को ना उतारे पो ना को नरा नंपा ने इस वाने में आवा किया तपरो वो वा आवा इस वाने में आवा क्या पंडे ही तारीख दे ते पराने का कमेउरी ना कोई मुझे को उसमें कंट्रोना यौन कोंगरा में यौन प्याम तका